तुम्हें उनको जब तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हुई तुम्हारी नजरों में कम दिखा रहा था और तुम्हें उनकी नजरों में बहुत कम दिखा रहा था, ताकि अल्लाह उस काम का फैसला निपटा दे जो बहरहाल पूरा होकर रहने वाला था और अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर लौटाए जाते हैं।

और उन लोगों की तरह ना होना जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को दिखाने की खातिर निकले और वो अल्लाह की राह से रोक रहे थे और अल्लाह उसे घेरे में लिए हुए था जो वो करते थे।

तो अब हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सुनेंगे जिसका नाम है दिस वीक विद हजूर। तो चलिए सुनते हैं।

एवरेज जो है पर ईयर वो 20.7 बनती है हजूर। रूहानी खजाइन और मलफूजात के बारे में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जो कुतुब हैं उनमें हजूर 76% किताबों का तर्जमा हो चुका है।